0: जेता तुम्हाने जाना का पाप इंद्री मने जाना का लाओ के काम करे नगानो त्यो तेंदे पंचाप के नंद्री मंत्रा सारा बुंतों का
1: उसोत नंदुलो ना पंडुशोने आरा कुरान नो ते की जेतों लो दे मान मजा जलाई ये जू
0: ये वासी जो
2: हाँ चीज
0: ये ना
2: हाँ बोले चीज मिचे
0: ये ना वासी नहीं इतने ही ये इलाय मर पंगार के तम नो दे इतिम आई क्या नो मर लाइसो दे अंगाल पर रखने हो
3: या पापा म्यूजिक